0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धरकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरे ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, जिंदगी में हम सभी ने कुछ न कुछ सपने देखे होते हैं। कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है और श्रोता साथियों कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसे देखकर लोग कहें हाँ इस इंसान ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। लेकिन श्रोता साथियों, सपना देखना जितना आसान है उसे पूरा करने की कोशिश करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रास्ते में डर आता है, लोगों की बातें आती हैं, असफलताएं आती हैं, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कभी लगता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। और यहीं से आज का हमारा विषय शुरू होता है श्रोता साथियों, जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए। जी हाँ श्रोता साथियों, जिंदगी में जोखिम लेना हमेशा गलत नहीं होता। सोच समझ कर उठाया गया कदम हमें आगे ले जा सकता है, लेकिन बिना कोशिश किए हार मान लेना हमें वहीं रोक देता है जहाँ हम खड़े होते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे जीवन में डर का होना स्वाभाविक है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैंने इतना समय लगाया और सफलता नहीं मिली तो, ऐसे सवाल हर किसी के मन में आते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ श्रोता साथियों इतना होता है कि कुछ लोग इन सवालों से डर कर रुक जाते हैं और कुछ लोग इन सवालों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यही लोग धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुँचते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में हर कोशिश सफलता नहीं देती, लेकिन हर कोशिश हमें कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाती है। अगर हम एक बार असफल हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सपना गलत था। हो सकता है साथियों कि हमारी तैयारी अधूरी रही हो, हो सकता है तरीका सही नहीं रहा हो, हो सकता है हमारे पक्ष में नहीं रहा हो। लेकिन श्रोता साथियों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति डरता है वह कमजोर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रोता साथियों। यह एक स्वाभाविक भावना है जो कि हर इंसान को लगती है। एक विद्यार्थी को परीक्षा का डर लगता है, एक युवा को नौकरी न मिलने का डर लगता है, एक किसान को फसल खराब होने का डर लगता है, एक छोटे व्यवसायी को नुकसान होने का डर लगता है, एक कलाकार को लोगों की प्रतिक्रियाओं का डर होता है। डर का होना सामान्य बात है साथियों। असली हिम्मत यह नहीं कि हमें डर ही ना लगे, असली हिम्मत तो यह है कि डर लगने के बावजूद हम सही दिशा में कदम उठाएं। इसलिए श्रोता साथियों, जब अगली बार आपके सामने कोई नया अवसर आए और मन में डर पैदा हो तो खुद से एक बार जरूर कहिएगा, डर लग रहा है लेकिन मैं सीखूंगा, मैं तैयारी करूंगा और कोशिश जरूर करूंगा। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए इस विषय को लेकर बातें चली रही है। और कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि डर हमारी कमजोरी नहीं है और कोशिश छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो इन बातों को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए इस विषय को लेकर, तो आगे जानते हैं साथियों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आज हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन श्रोता साथियों, उसके पीछे उसकी मेहनत हमें नहीं दिखाई देती, हमें उसका परिणाम दिखाई देता है, उसकी असफल कोशिशें नहीं। किसी ने कई बार नौकरी के लिए आवेदन किया होगा, किसी ने कई बार परीक्षाएं दी होंगी, किसी ने अपने काम में कई बार नुकसान देखा होगा, किसी ने लोगों की आलोचना सुनी होगी, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। यही लगातार कोशिश धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार मेहनत हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है और सफलता बाद में देती है। जी हाँ श्रोता साथियों, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने मिलती है। कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं, कोई कहेगा इतना बड़ा सपना मत देखो, कोई कहेगा पहले कोई सुरक्षित रास्ता चुनो। ऐसी बातें कई बार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। लेकिन श्रोता साथियों हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति हमारी परिस्थिति नहीं जानता, हर व्यक्ति हमारे सपने नहीं समझ सकता। इसलिए श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपने जीवन का फैसला सोच समझ कर आप खुद लीजिए। अगर सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी ही होगी और आपका परिणाम भी आपके जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही साथियों, हम देखते हैं कि छोटे कदम होते हैं वही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अगर आपको कोई कौशल सीखना है तो रोज कुछ समय सीखिए, अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो पहले उसके बारे में जानकारी जुटाइए, अगर आपको बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाना है तो रोज बोलने का अभ्यास कीजिए, अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो रोज थोड़ी सी तैयारी कीजिए। जी हाँ श्रोता साथियों, हर दिन का एक छोटा प्रयास आपके बड़े सपने की ओर एक कदम है, इसलिए अपने छोटे कदम को कभी छोटा मत समझिए। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमें अपनी तुलना भी दूसरे लोगों से नहीं करनी है। आज के समय में हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। किसी की नौकरी लग गई तो हमें अपने चिंता होने लगती है, किसी ने घर बना लिया तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, किसी को सफलता मिल गई तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत कम है। लेकिन श्रोता साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है। किसी की शुरुआत पहले हुई, किसी की परिस्थितियाँ अलग हैं, किसी के अवसर अलग हैं। इसलिए श्रोता साथियों, दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को

छोड़िए, अपना ध्यान है वो अपने रास्ते पर रखिए। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि हम कभी कभी इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए श्रोता साथियों हमेशा सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपके पास जितना है वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटा काम कीजिए, छोटा लक्ष्य बनाइए, छोटी उपलब्धियां हासिल कीजिए, फिर अगला कदम उठाइए, क्योंकि श्रोता साथियों रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचता है। जो व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहता है कि मेरे पास सब कुछ नहीं है वह शायद शुरुआत ही नहीं कर पाता है। साथ ही श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज की हमारी बात का सार बहुत सरल है। जिंदगी में डर आएगा, असफलताएं आएंगी, लोग सवाल करेंगे, कई बार रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन इन सब के बीच हमें एक चीज नहीं छोड़नी है, वो है श्रोता साथियों अपनी कोशिश। क्योंकि हो सकता है कि आज की कोशिश सफल न हो सकता है कि कल भी परिणाम आपके मन के अनुसार नहीं आए। अगर आप लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहे तो आपकी संभावना बनी रहती है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं असफलता से सीखूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं दूसरों की बात सुनूंगा लेकिन अपने सपनों को बिना सोचे नहीं छोड़ूंगा, मैं डरूंगा जरूर लेकिन डर के कारण रुकूंगा नहीं, और सबसे जरूरी बात, मैं जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरूंगा। याद रखिए साथियों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने के बाद उनके लिए कदम भी उठाते हैं। अगर रास्ता मुश्किल है तो थोड़ा धीरे चलिए, अगर थक गए तो थोड़ा आराम कर लीजिए, अगर गिर गए तो खुद को संभालिए, लेकिन अपने सपनों से मुंह मत मोड़िए। क्योंकि श्रोता साथियों मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बावजूद चलता रहता है। तो उठिए साथियों, अपने सपनों को याद कीजिए और आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा कदम ही आपके बड़े सपने की पहली सीढ़ी बन जाए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इस अनुमति के साथ नमस्कार।

घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरे ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखा है, तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि परिवार में काम का बंटवारा, घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों हो।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, घर हमारे लिए सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है। घर वह जगह है जहाँ हम अपने लोगों के साथ रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर को संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
0: बिल्कुल,
1: सुबह उठना, चाय नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, बाजार से सामान लाना, इन छोटे बड़े कामों की एक लंबी सूची है।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर इन कामों को परिवार के किसी एक सदस्य खासकर महिला की जिम्मेदारी मान लिया जाता है।
0: जी हाँ,
1: वो बिना शिकायत सुबह से रात तक काम करती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि जब घर सबका है तो घर के काम की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की क्यों?
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे कि परिवार में काम का बंटवारा, घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों हो।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें जरूर होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि परिवार में काम का बंटवारा किस तरीके से हो और घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों हो।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, ये विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा काम जिसे हम रोज देखते हैं, रोज करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी मेहनत के काम की तरह वह पहचाना नहीं जाता। परिवार में काम का बंटवारा, घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों हो, ये विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों घर सिर्फ चार दीवारी से नहीं बनता, परिवार के हर सदस्य के समय, मेहनत, सहयोग और अपनापन से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कई बार घर के कामों की जिम्मेदारी परिवार के किसी एक सदस्य पर ही आ जाती है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, सामान व्यवस्थित करना, ये सभी काम लगातार चलते रहते हैं अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो घर में सबसे ज्यादा समय रहता हो।
1: बिल्कुल कशिश, सरकारी योजना का नाम और उसका लाभ सुना जाता है लेकिन इन सारी चीजों का कोई हिसाब नहीं होता। उसी तरह घर में काम कर रही जो महिला है उसका भी कोई हिसाब नहीं है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हमारे समाज में घर के काम को कई बार काम ही नहीं माना जाता। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना या बुजुर्ग की देखभाल करना, इन कामों को अक्सर यह कहकर टाल दिया जाता है कि ये तो घर के ही काम है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जरा सोचिए अगर यही काम कोई व्यक्ति बाहर जाकर करे तो उसके लिए मेहनत ताना दिया जाता है, फिर घर में रहने वाली व्यक्ति के समय और मेहनत की कीमत क्यों नहीं समझी जाती।
0: बिल्कुल,
1: घर का काम शारीरिक मेहनत के साथ साथ समय, धैर्य और जिम्मेदारी भी मांगता है। सुबह परिवार के बाकी सदस्यों के उठने से पहले काम शुरू करना और रात में सबके सो जाने के बाद भी काम करते रहना आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि घर का काम किसी एक सदस्य का नहीं, पूरे एक परिवार का काम है। परिवार में जब काम बांटा जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का बोझ कम नहीं होता बल्कि पूरे परिवार में सहयोग और अपनापन बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों, अगर माँ खाना बना रही है तो पिता सब्जी काट सकते हैं, अगर पिता बाजार से सामान ला रहे हैं तो बेटा और बेटी घर की सफाई में मदद कर सकते हैं, अगर कोई सदस्य कपड़े तय कर रहा है तो दूसरा उन्हें व्यवस्थित कर सकता है। काम बांटने के लिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बराबर समय दे, जरूरी ये है कि हर सदस्य अपनी क्षमता और उपलब्धता समय के अनुसार योगदान दे।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे भी अपनी उम्र के अनुसार छोटे काम कर सकते हैं, जैसे अपनी किताबें और खिलौने व्यवस्थित करना, अपना बिस्तर ठीक करना, खाने के बाद अपनी प्लेट सही जगह रखना, कपड़े निर्धारित स्थान पर रखना, इससे बच्चे भी जिम्मेदारी की भावना जो है वो सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, और जैसा कि हमने हमारे श्रोता साथियों को पहले भी बताया था कि एक सवाल हम सभी के मन में ये आता है कि क्या घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है जो घर में सबसे ज्यादा समय बिताता हो, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल श्रोता साथियों, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होगी। हम देखते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन क्या हमारा काम का बंटवारा भी उतना ही मिलजुल कर होता है?
1: बिल्कुल,
0: सुबह उठने से लेकर अंजलि जी रात तक हम देखते हैं कि घर के कई ऐसे छोटे बड़े काम हैं जो हम किसी को करते हुए देखते हैं। किसी को नाश्ता बनाना होता है, किसी को बच्चे को तैयार करना होता है, किसी को स्कूल या ऑफिस जाना होता है, तो किसी को बाजार से सामान लाना होता है, तो किसी को घर की साफ सफाई भी करनी होती है। इनमें से श्रोता साथियों कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद भी कोई ये नहीं पूछता कि आज आपने इतना काम क्या किया। विशेषकर घर के दैनिक कार्यों को लेकर अक्सर जिम्मेदारी बल्कि कर्तव्य मान लिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और यही सोच कई बार अंजलि जी परिवार के किसी एक सदस्य पर काम का ज्यादा बोझ डाल देती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हमें ये समझना होगा कि घर का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम समय, मेहनत और जिम्मेदारी मांगता है।
1: बिल्कुल कशिश, कई घरों में आज भी यह सोच दिखाई देती है कि खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना केवल महिलाओं का काम है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन महिला भी परिवार की सदस्य है, वह घर संभालने के साथ नौकरी, खेती, पशुपालन, छोटा व्यवसाय या दूसरे काम भी कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: अगर वह बाहर भी काम करती है या घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी पर है तो उसके पास आराम, अपने स्वास्थ्य, सीखने या अपने लिए समय निकालने का अवसर बहुत कम बचता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमें सोच बदलनी होगी कि घर का काम महिलाओं का स्वाभाविक काम है। घर चलाना किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं, घर चलाना परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: घर के काम में पुरुषों की भागीदारी केवल महिला की मदद करना नहीं है, ये परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी निभाना है। कई बार पुरुष कहते हैं कि मैं तो बाहर काम करता हूँ, लेकिन घर में रहने वाला व्यक्ति भी लगातार काम ही करता रहते है। दोनों तरह की मेहनत परिवार के लिए जरूरी है। अगर पति काम से लौटकर बच्चों को संभाल ले, खाना लगाने में मदद कर दे, बर्तन व्यवस्थित कर दे या बाजार का काम जो है वो कर दे, तो पत्नी को कुछ समय आराम मिल सकता है। इसी तरह पिता अगर बेटी को घर के काम में शामिल करते हैं और बेटा यह सीखता है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो घर की जिम्मेदारी सभी की हो जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है
1: जी हाँ।
0: कि किस तरीके से घर के जो काम की जिम्मेदारी है वो सभी की होनी चाहिए, किसी एक पर काम का बोझ नहीं जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी केवल महिला की मदद करना नहीं या परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी निभाना है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार पुरुष कहते हैं तो मैं तो बाहर काम करता हूँ, लेकिन घर में काम करने वाला व्यक्ति भी लगातार काम करता रहता है। बेटियों और बेटों में अंतर भी हमें नहीं करना है, क्योंकि श्रोता साथियों काम बांटते समय हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम बेटा बेटी में भेदभाव कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अक्सर बेटी से कहा जाता है कि तुम तो लड़की हो, घर का काम सीखो। वहीं बेटे से कहा जाता है तुम तो रहने दो, ये काम लड़कियां करती हैं। यह सोच बच्चों के मन में बचपन से जिम्मेदारियों को लेकर अलग अलग धारणा बना देती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बेटी घर में पानी भरने, सामान रखने या सफाई में मदद करती है तो बेटा भी वही काम सीख सकता है। बेटे को खाना बनाना सिखाना और बेटी को बाहर के छोटे जरूरी काम करने देना दोनों ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को काम का लिंग नहीं, जिम्मेदारी का महत्व सिखाना है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि हमारे गाँव में घर के साथ खेती, पशुपालन, पानी लाना, चारा काटना, खेत का काम करना और परिवार की देखभाल जैसी कई जिम्मेदारियां होती हैं। कई महिलाओं को दिन भर घर के काम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती है, पशु का देखभाल करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में अगर परिवार के सदस्य छोटे छोटे काम आपस में बांट लेते हैं कशिश, तो महिलाओं का काफी बोझ कम हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई पशु के लिए पानी रख सकता है, कोई चारा व्यवस्थित कर सकता है, तो कोई बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर सकता है, कोई बाजार का सामान ला सकता है, कोई शाम को बर्तन या घर की सफाई में हाथ बटा सकता है। इससे काम भी समय पर होगा और परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि श्रोता साथियों काम का बंटवारा सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि परिवार में सहयोग और सम्मान बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अगर घर के सभी सदस्य अपने क्षमता और समय के अनुसार काम बांट ले तो किसी एक व्यक्ति पर लगातार दबाव नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि पिता जो है वो बाजार का सामान ला सकते हैं, माँ खाना बनाने के साथ साथ दूसरे सदस्यों के साथ काम बांट सकती है, बच्चे अपनी किताबें और कमरे को व्यवस्थित कर सकते हैं, भाई बहन बर्तन रखने, पानी भरने या घर की छोटी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। कहने का मतलब यही है अंजलि जी कि इसका मतलब है कि हर व्यक्ति हर दिन बराबर समय तक एक जैसा काम करे।
0: बिल्कुल।
1: समानता का मतलब होता है जिम्मेदारी को परिस्थिति और क्षमता के अनुसार मिलकर निभाना।
0: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि काम का बंटवारा केवल मेहनत कम करने का तरीका नहीं है, यह परिवार में रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम है।
1: बिल्कुल।
0: जब पति पत्नी के काम को समझता है, बच्चे माता पिता की मदद करते हैं और परिवार के बुजुर्ग भी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करते हैं, तो घर में तुम्हारा काम और मेरा काम की जगह हमारा घर और हमारी जिम्मेदारी की भावना आती है।
1: बिल्कुल।
0: काम करते हुए परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं, इससे आपसी समझ पड़ती है और कई छोटी छोटी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ सरल तरीके से काम बांटा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि कौन खाना बनाएगा, कौन बाजार जाएगा, कौन बच्चों को संभालेगा, कौन सफाई करेगा, इस प्रकार परिवार मिलकर बात कर सकता है। इसी के अनुसार दूसरा काम होता है क्षमता के अनुसार, जो कि छोटे बच्चों के लिए होता है कि छोटे बच्चों को हमें कौन सा काम देना है, बड़े सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तीसरी बात आती है काम को स्थायी रूप से किसी एक व्यक्ति के सिर न डाले, अगर संभव हो तो कुछ काम बारी बारी से किए जा सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि पूरा खाना घर का एक महिला ही बनाएगी तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। इसके साथ अगर कोई सब्जी काट देता है, कोई टमाटर, कोई मिर्ची, लहसुन, कितने सारी खाने की चीजों में जरूरत होती है, तो अगर इस तरीके से कोई आटा लगा दे तो ये सारे काम बढ़ जाएंगे और जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी के साथ श्रोता साथियों, किसी के काम को कम न समझें। घर में खाना बनाना हो या बाहर से सामान लाना

0: उन दोनों परिवार के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: थकान होने पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आज मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए मदद मांगने में किसी प्रकार की कोई झिझक न करें। समय रहते मदद मांगे और अपने शारीरिक थकान को दूर करने के लिए समय रहते घर का काम हमें पूरा कर लेना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे समाज में लंबे समय से एक धारणा रही है कि खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना महिलाओं की ही जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, हमें यह सोच बदलने की जरूरत है। खाना बनाना जीवन की जरूरी कला है, सफाई करना जीवन की जरूरी आदत है, अपने कपड़े व्यवस्थित करना आत्मनिर्भरता है और बच्चों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: इनमें से कोई भी काम केवल लड़कियों या महिलाओं के लिए निर्धारित नहीं है अंजलि जी। ऐसे में लड़का हो या लड़की, घर के काम सीखना दोनों के लिए जरूरी है। अगर एक बेटा अपने कमरे की सफाई करता है, अपनी प्लेट खुद रखता है, परिवार के काम में हाथ बटाता है, तो वह किसी पर एहसान नहीं कर रहा, वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: और कहा भी गया है कि बेटी हो या बेटा, काम सीखना है जरूरी, सांझी जिम्मेदारी से होगी खुशियों की डोरी पूरी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है साथियों कि परिवार में काम का बंटवारा, घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों हो। जैसा कि अंजलि जी गीत से पहले हम जान पाए थे कि परिवार की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर बात करें कि बच्चों को घर के कामों में किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है, तो बचपन से ही बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में शामिल करना बहुत जरूरी है। उन्हें अपनी किताबें व्यवस्थित करना, अपना कमरा साफ रखना, अपनी चीजें सही जगह पर रखना, खाने के बाद अपनी प्लेट उचित स्थान पर रखना जैसे काम सिखाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे बच्चों में अंजलि जी जिम्मेदारी की भावना भी पैदा होगी। बच्चा यह समझ सकता है कि परिवार केवल उसे उसकी जरूरतें पूरी करने वाला समूह नहीं है, बल्कि वह भी परिवार के लिए कुछ कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो आदत है वो आगे चलकर उसे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करेगी।
1: बिल्कुल कशिश, परिवार तभी मजबूत बनता है जब उसमें केवल प्यार बांटा नहीं जाता बल्कि जिम्मेदारी भी बांटी जाती है। हम देखते हैं कि घर में अगर एक व्यक्ति सुबह से रात तक काम करता रहे और बाकी लोग यह सोचते रहे कि ये उसका काम है, तो धीरे धीरे थकान के साथ मन में भी बोझ जमा होने लगता है।
0: जी हाँ।
1: इसके विपरीत जब परिवार का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार हाथ बांटता है तो काम बोझ नहीं लगता। हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि घर चलाना कोई एक व्यक्ति की ड्यूटी नहीं है। घर में रहने वाला हर व्यक्ति उस घर की जिम्मेदारी में अपना योगदान दे सकता है। बेटी को घर का काम सिखाइए, बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए, पति पत्नी एक दूसरे के काम को समझिए, बच्चों को छोटी उम्र से जिम्मेदारी दीजिए और बुजुर्गों की क्षमता और सुविधा के अनुसार उन्हें भी परिवार की गतिविधियों में शामिल कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि जिस घर में काम बांटा जाता है वहाँ थकान कम होती है, जिस घर में जिम्मेदारी बांटी जाती है वहाँ सहयोग बढ़ता है, और जिस घर में सहयोग बांटा जाता है वहाँ रिश्ते भी मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए कि घर में बैठकर बातें जरूर कीजिए, लेकिन घर के जो काम है उसमें सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर हाथ बटाइए।
0: जी,
1: किस तरीके से किस काम को कैसे करना है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ इसमें युवाओं की भूमिका बहुत काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि आज के युवा शिक्षा, तकनीक, रोजगार और नए विचारों की बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उन्हें अपने घर के व्यवहार में भी समानता और सहयोग को अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर युवा घर में यह सोच विकसित करे कि घर का काम मेरा भी काम है, तो धीरे धीरे परिवार की सोच में बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल।
0: युवा अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं, घर में छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी में हाथ बटा सकते हैं, घर के कामों को लेकर किसी का मजाक उड़ाने के बजाय उसका सम्मान भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि काम करने वाले व्यक्ति को उसके काम के लिए धन्यवाद और सम्मान देना भी हमें युवाओं को सिखाना होगा।
1: बिल्कुल कशिश, जैसा कि कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, आगे भी कुछ बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हां अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि परिवार की असली खूबसूरती केवल इस बात में नहीं होती कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, बल्कि इस बात में दिखाई देती है कि वे एक दूसरे की परेशानियों और जिम्मेदारियों को कितना समझते हैं। कई बार हम अपने सामने ही हो रही मेहनत को इसलिए नहीं देख पाते कशिश, क्योंकि वह रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी होती है।
1: बिल्कुल,
0: सुबह की पहली चाय से लेकर रात में घर को समेटने तक किसी सदस्य की लगातार चलती मेहनत हमें सामान्य लगने लगती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब वही मेहनत एक दिन काम न कर पाए, तब हमें पता चलता है कि घर की जो व्यस्तता है वो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत छिपी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार में एक दूसरे के काम को पहचानना बहुत जरूरी है। किसी के काम को केवल इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसके बदले में उसे वेतन नहीं मिलता। घर में भोजन तैयार करना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, घर व्यवस्थित रखना, इन सब के पीछे किसी न किसी की मेहनत होती है। और उस मेहनत के लिए धन्यवाद कहना, उसकी थकान को समझना और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना भी परिवार के संस्कारों का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, जैसे कि युवा साथियों, श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि एक परिवार है। सुबह माँ जल्दी उठती है, नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, घर की व्यवस्थित करती है और फिर अपने दूसरे काम करती है। शाम को परिवार के बाकी सदस्य घर लौटते हैं और आराम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, माँ भी थकी हुई है लेकिन उनके काम का कोई निश्चित समय नहीं है। अब उसी परिवार में अगर पिता बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे, बेटा अपना कमरा जो है वो साफ करने लगे, बेटी रसोई में सहायता करने लगे और परिवार के सभी सदस्य छोटे छोटे काम बांट लें, तो क्या बदलेगा श्रोता साथियों? काम खत्म नहीं होगा लेकिन काम का बोझ जरूर कम हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि घर में सहयोग की भावना बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि ये जरूरी नहीं है कि परिवार का हर सदस्य हर काम करे। जरूरी तो ये है कि कोई एक व्यक्ति लगातार सारे काम करता न रह जाए और बाकी लोग केवल सुविधा लेने वाले सदस्य बनकर न रहे। जब हम काम को बांटते हैं तो हम केवल जिम्मेदार को नहीं बांटते, हम थकान बांटते हैं, समय बचाते हैं, समय देते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए साथियों कि जिस घर में काम की जिम्मेदारी साझा होती है उस घर में रिश्तों की खुशियां भी साझा होती है। और घर चलाना किसी एक का काम नहीं, परिवार को साथ लेकर चलना हर सदस्य का काम है।
0: बिल्कुल कशिश, काम का बंटवारा केवल काम कम करने की व्यवस्था नहीं बल्कि सम्मान देने की आदत है। जब परिवार का कोई सदस्य दूसरों के काम को समझने की कोशिश करता है तो उसके भीतर संवेदनशीलता पैदा होती है। उसे पता चलता है कि हर जिम्मेदारी के पीछे समय और मेहनत लगती है और यही समझ परिवार में बराबरी की भावना को जन्म देती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें बच्चों की परवरिश में भी इस सोच को जगह देनी चाहिए। बच्चा जब अपने कमरे की चीजें व्यवस्थित करना, अपनी किताबों को संभालना या घर की छोटी जिम्मेदारी निभाना सीखता है तो वह केवल एक काम नहीं सीख रहा होता बल्कि जीवन जीने का तरीका सीख रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: और आगे चलकर यही आदत उसे जिम्मेदार जीवन साथी, माता पिता और परिवार का सहयोगी बनाती है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, परिवार में काम बांटने का अर्थ यह नहीं है कि हर दिन हर व्यक्ति को बिल्कुल बराबर काम करना ही है। किसी दिन कोई सदस्य अधिक व्यस्त हो सकता है, किसी दिन कोई थका हुआ हो सकता है, किसी समय किसी को विशेष देखभाल की जरूरत हो सकती है। असली समझदारी वहाँ होती है कशिश, जहाँ लोग परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे का साथ दें।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

सेहत नु राज हो है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ी सी व्यायाम ने तात्कालिक जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खाओ, बीमारी ने दूर भगावो, जंक फूड तकी दूर रहो, नींद पूरी लो ने खुश रहो। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रहो, खुश रहो, क्योंकि आज है सेहत ने असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंसुडवारा से। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के बोल ही मोहब्बत ना हो जाए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है शमशिल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजात खान, अनु खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से PH निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल जी निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रही नारायण इगली, सोपान इगली, आशीष मेहकर जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगूताई राज यादव, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख और कुमारी प्रणाली जी देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल ही मोहब्बत न हो जाए। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता जी, अलका जी और कुमार सोनू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मोहब्बत होना जाए। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। गीत के बोल ही धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इस गीत के अनुरोध करता है बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कश्मीर से। फिल्म का नाम है तुम बिन, गीत के बोल हैं कोई फरियाद। इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। इस गीत के अनुरोध करता है मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी जी गोस्वामी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया और तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, श्रीत रमेश शाहू जी। डुमराव बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश अंसारी। बक्सर बिहार से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, इकबाल मस्ताब जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कोई फरियाद। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है आवारगी। गीत के बोल हैं, बाली उम्र में मेरा क्या हाल हो गया। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजवाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। इसी भी जुड़ना चाह रहे धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही, बाली उम्र ने मेरा हाल क्या कर दिया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन, गीत के बोल हैं मैं जहां रहूं। इस गीत की फरमाइश करता है माया देवी, ऋतिक और अदिति जी का साना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है गंजद्वारा से शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रही कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इस गीत के अनुरोध करता है लाहौरा सी डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामलेश नेताम, माहिर नेताम। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन, गीत की बोल ही मैं जहां रहूं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर सी। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, गीत के बोल ही कभी तो छलिया लगता है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेंद्र श्री शर्मा, करण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, जेसी अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मेलेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, पीबी कुटलेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, ईशान चिपा, पूजा परिहार जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। पटेल नगर मालोड़ से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, घनदीप झांझोरिया, गुड्डू जी झांझोरिया। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहांची अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांची अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, गीत के बोल हैं कभी तो छलिया लगता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है कलयुग, गीत के बोल ही जुदा हो गए भी। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवाजी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाइटा, दिलीप दीक्षा कोशी मुणत। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नाजियाना शेख, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल सुमेब जी मुजावर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जुदा होके भी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह 11 बजे से ये सिलसिला बना हुआ है, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर के साथ में। तो श्रोता साथियों, फरमाइशी के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ में। स्वीकार कीजिएगा आप सभी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आदत फिल्म का, जुदा होके भी। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, फिल्म का नाम है परदेस। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी ने, और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। उदयन पाल, जयहिन पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त पाल परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबीसिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। बागपत से है जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन जी, भुवनेश्वरी देवी जी और सुधर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ अगले बढ़ते हैं फिर से फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। फिल्म का नाम है लाइफ इन मेट्रो, गीत के बोल हैं इन दिनों। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हमारे बीच में श्रोता साथी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब और लड्डू जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजन, मनहरण वर्मा जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। तिलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। और भी हमारे श्रोता साथी अमरावती महाराष्ट्र से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश की इस गीत के साथ में। गीत के बोल है इन दिनों की बात है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, ये फरमाइश हमारे बीच आई है सहारनपुर से। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। गीत के बोल हैं, क्यों चाहती है पवन, ना तुम जानो ना तुम ना हम जाने। फरमाइश का गीत जुड़ रहा है श्रोता साथियों, और फरमाइश करता है सैयद मसूर, साइना अक्सर, अक्सर नाफिया और आफिया इब्राहिम सद्दाम, नाजिया जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थाटी, तिना तिप्ता कुमारी थांडी, वामिका थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, वाणी थांडी जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मुदंसारी, गुलाम शाबी राही, मेहराज जहां। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं मुंगे पेठण महाराष्ट्र से, बाबा साहेब कगणक्कर, सागरबाई कगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्यामी ईश्वरी कंगणक परिवार के सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, क्यों चलती है पवन, ना तुम जानो ना हम। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों हमारी अधूरी कहानी। गीत के बोल हैं हम नवा। फरमाइश करता जुड़ रहे सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी दोस्त हमारे, वसीम महाराष्ट्र से हैं, मास्टर विठल, सुरेश, सुषमा सुरेश, परिधि सुरेश, मायरा सुरेश जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं पोटाकला दुर्ग से जुड़ रहे हैं, संजय कुमार साहू, कुमारी इंद्राणी माया साहू, सुजाता साहू। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शिवम बेंडे, विजय बेंडे, पवनचर्य, संजीव डाबीराव जी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं रुपेश सिंह, महस प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम नवा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
2: क्या बात है, चंद ही लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने। सारे एक्सपर्ट्स को मात दे दी। यू के
1: आंख में कुछ चला गया
2: है।

0: बात करनी है, प्लीज दिला दो।
1: मम्मा, I'm here.
0: सांझ?
1: I told you ना, अब हम रोज फ्री में बात कर सकते हैं। मेरी आंटी ने प्रिंसिपल से भी

0: हैप्पी दिवाली।
1: हैप्पी दिवाली सर।
2: हैप्पी दिवाली सर।
3: आज लग रहा है जैसे जगह हमेशा से किसी अंधेरे में घिरी।
4: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश की गीत हमारे बीच आई है गुरावली से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी। खुद गर्ज गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, प्यार हमारा अमर रहेगा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे गुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नरीन अंसारी जी, नौरीन आसना के फंसारी जी और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं पंजाब से सुभाष गोधरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी, पार्वती जी और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। जाखोद राजस्थान से समुदाय खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं प्यार हमारा अमर रहेगा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ ही रही हैं और हम मनोरंजन कर रहे हैं दोस्तों की फरमाइश के गीतों के साथ में। इसी बीच फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है आक्रोश, गीत के बोल हैं सौदेबाजी। ये फरमाइश हमारे बीच आई शिवाजी चौक कटनी से। फरमाइश करता है अनिल ताम्राकर, अमर ताम्राकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्राकर, रंजन रज्जक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनीयश और सौम्या जी। इसी बीच खंडवा से जुड़ रहे संजय कॉलोनी से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउलक अब्दुल रहमान डावर, उमर डावर और पाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। अनारकली बाजार जगराव से है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीडेबी गव्या, जयपाल यादव, सुच्चा सिंह पाठक जी। येताला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल और अरणय जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल। तो आइए साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सौदेबाजी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा गीत था सुदेवासी का, इसी बीच बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, ये गीत आया है पथरोट से। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, गीत के बोल जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपनी कहानी कैसे कहाँ कहेंगे। ये गीत के बोल हैं और फरमाइश करता पथरोट से है विजय अम्बाड़कर, सुनीता अम्बाड़कर, अक्षय राधिका, ऋषिकेश अम्बाड़कर जी। पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक बत्ता और विनश वंश बत्ता जी। करेली से आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीन अंसारी, शमाल सिंह, माहिनूर अंसारी और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, हीरामन शंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि जी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अपनी कहानी कैसे कहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। दमदन एल कलकत्ता एयरपोर्ट से आई ये फरमाइश आई है श्रोता साथियों। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी, गीत के बोल हैं आयत की तरह। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूँगी। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता जी, रिम्मी तनुश्री गुप्ता जी और जुमली तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, तुष्टि आयुषी, अनिरुद्ध और मुन्नी देवी जी, जयप्रकाश साव जी, हीरा मोती, पन्नालाल जी, मलयान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वी एम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन, मस्तानपुरना जंक्शन से हैं अनंता भगत, अनुराग चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जलालाबाद वेस्ट से भी जुड़ रहे हैं। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित्त तो आहूजा जी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू युक्ता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामते, धर्मदास वाधवानी जी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, गीताबाई सेन, रानू अग्रवाल, लक्ष्मी ध्रुव जी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। जुड़ना चाह रहे हैं गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौड़, आबाद खान, आफिन खान, दिनेश वर्मा, गफर खान, अभिजीत कमाड़कर, फारूक अली खान, मुकेश कश्यप, अशोक शिवम कुमार, हीरा मानी वर्मा, चन्नूलाल लाल सिंह रोल, संजय ध्यान जी, डिगी दर्शन जी, रोहित जयलक्ष्मी, राज शर्मा, शंकरलाल जायसवाल, दिलीप कुमार सोनी, जयराम श्रृंगार कारजी, राजेश कुमार वर्मा जी, मोहम्मद वकार फरादी से जुड़ रहे हैं ये। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी। धर्मेंद्र छिपा, बुधराज खोरवाल, दरा पंडित, राहुल मनोवर जी, जाहिद अख्तर जी, मुजफ्फर अली खान जी, अनिल ताम्रकर जी, ताज मोहम्मद अंसारी जी, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्राधि दीक्षा चंदन प्राणी जी, विनोद मुड़त, जाकिर खान, बालकरण वर्मा, नारायण लाल साहू, दीपेश वर्मा, ये शेरकोट बिजनौर से जुड़ना चाह रहे हैं। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगे। राजेश कुमार वर्मा, मजरई अंसारी जी, अनिल कोहले जी, साहिल कांगड़ा जी, मिमतियाज इमाम, अतीश जी, कलीम जख्मी, नीलू मेघ, नीलम जी, आमना परवीन जी, वल्लीउल्लाह अंसारी जी, रमेश कुमार निषाद, ओम गायकवाड़ जी, प्रमिला जाटव जी, शब्बीर बनहट्टी जी, फरहान खान जी, कृष्णा मेहरा जी, बिट्टू भाटिया, संजय कुमार साहू जी, सुधर नूतन जी, अभिजीत प्रसाद जी और महेंद्र सिंह जी, संतोष खड़से, रमेश कटनकर, मनोज जेठवा जी, ये सभी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं कलानूर से। तो आइए दोस्तों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आयत की तरह। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूँगी कि इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस फरमाइश में जो भी हमारी आपसे कार्यक्रम में बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में नई नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागड़ रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
3: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
2: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
5: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, युवा ग्राहक नहीं जिम्मेदार उपभोक्ता भी है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, खरीदारी सिर्फ जरूरत पूरी करने का नाम नहीं है, ये हमारे चुनाव, हमारी जिम्मेदारी और हमारे भविष्य की पहचान भी है। श्रोताओं, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, कैसे विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। हम सभी बाजार जाते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, कपड़े जूते किताब इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, यानी कि हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोताओं, सवाल ये है कि क्या युवा केवल ग्राहक है? क्या उसका काम सिर्फ अपनी पसंद की चीज खरीद लेना है, या फिर एक युवा की जिम्मेदारी इससे कहीं ज्यादा है?
0: जी हाँ।
1: आज हम देखते हैं कि आज की बदलती दुनिया में युवा केवल वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार नहीं है, बल्कि वो अपने फैसलों के माध्यम से बाजार, समाज और पर्यावरण को भी प्रभावित करने वाला जिम्मेदार उपभोक्ता बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे विषय जुड़ चुका है बातचीत का, हम बात कर रहे हैं कि युवा सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि जिम्मेदार उपभोक्ता भी बन सकते हैं। जैसे कि जागृति जी, गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे युवा साथियों को बताई थी, यही अगर बात करें कि ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर क्या होता है, तो अक्सर हम ग्राहक और उपभोक्ता शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ग्राहक वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है, जबकि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उस वस्तु या सेवा का उपयोग करता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जागृति जी, जिम्मेदार उपभोक्ता होना केवल सामान खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि सही जानकारी ली जाए, गुणवत्ता और कीमत को समझा जाए, जरूरत और इच्छा के बीच अंतर को समझा जाए, साथ ही अपने अधिकारों को जानना, गलत या भ्रामक व्यापारिक तरीकों के प्रति जागरूक रहना।
1: बिल्कुल
0: आज के समय में ये जिम्मेदारी युवाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि युवा वर्ग बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। युवा नई चीजों को जल्दी अपनाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों की खरीदारी के फैसलों को भी प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: इसलिए युवा अगर जागरूक होकर खरीदारी करेंगे तो वह सिर्फ अपने लिए सही फैसला नहीं करेंगे, बल्कि समाज में भी जिम्मेदार उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि पहले खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता था, दुकानदार सामान देखना, उसकी कीमत पूछना और फिर खरीदारी करना सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन ने खरीदारी का तरीका ही बदल दिया है।
0: बिल्कुल
1: एक क्लिक में सामान हमारे सामने होता है, अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं, सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर किसी उत्पाद का प्रचार करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सेल, ऑफर, लिमिटेड टाइम डील, ये सब जो शब्द हैं वो हमें तुरंत खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में युवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि क्या वो अपनी जरूरत के अनुसार खरीद रहा है या केवल विज्ञापन और आकर्षण के कारण। किसी वस्तु पर भारी छूट देखकर उसे खरीद लेना हमेशा समझदारी नहीं होती श्रोता, कई बार हमें ये देखना होगा कि क्या हमें वास्तव में उस वस्तु की जरूरत है।
0: बिल्कुल
1: उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी कीमत उचित है या नहीं, क्या उसके बारे में दी गई जानकारी सही है। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कहा भी गया है कि ऑफर देखकर मत बहक जाना,
1: बिल्कुल
0: पहले जरूरत को पहचानना।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, जरूरत और इच्छा के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जागृति जी, जिम्मेदार उपभोक्ता बनने की शुरुआत घर से होती है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में हमारे युवाओं को ये समझना होगा कि हर वह चीज जिसकी हमें इच्छा होती है जरूरी नहीं है कि वह हमारी आवश्यकता भी हो।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा के पास एक ठीक ठाक मोबाइल है, लेकिन नया मॉडल बाजार में आते ही उसे लगता है कि अब पुराना मोबाइल पर्याप्त तो उसके लिए नहीं है, वह केवल ट्रेंड के कारण नया फोन खरीदना चाहता है। ऐसी स्थिति में साथियों, जिम्मेदार उपभोक्ता खुद से कुछ सवाल कर सकता है, जैसे कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, क्या मेरा वर्तमान सामान काम नहीं कर रहा, क्या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर ये खरीद रहा हूँ या मुझे सच में इसकी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: क्या मेरे पास इसे खरीदने के बाद भी दूसरी जरूरी चीजों के लिए पर्याप्त पैसा रहेगा। श्रोता साथियों, ऐसे छोटे छोटे सवाल हमें सोच समझकर निर्णय लेना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से युवा ग्राहक नहीं बल्कि जिम्मेदार उपभोक्ता बन सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो साथियों, बातें निरंतर आपके साथ कार्यक्रम युवाओं की आवाज में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि युवा ग्राहक नहीं बल्कि जिम्मेदार उपभोक्ता भी बन सकता है, आपसे कहना चाहेंगे साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विज्ञापन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: विज्ञापन किसी उत्पाद की जानकारी देने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वो विज्ञापन और वास्तविकता के बीच अंतर समझे। कई बार कशिश किसी उत्पाद को बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, किसी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके साथ दिखाया जाता है और हमें लगता है कि अगर हम भी वही उत्पाद खरीदेंगे तो हमें भी वैसा ही परिणाम मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन साथियों एक जिम्मेदार उपभोक्ता केवल प्रचार देखकर फैसला नहीं करता है, वो उत्पाद की वास्तविक जानकारी, गुणवत्ता, कीमत, उपयोगिता और विश्वसनीयता को देखता है। कहा गया है कि विज्ञापन दिखाए सपने हजार, जिम्मेदार उपभोक्ता करे तथ्यों पर विचार।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। जैसा कि आज का युवा ऑनलाइन खरीदारी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले वर्गों में शामिल है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कपड़े, जूते, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, भोजन और कई दूसरी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। श्रोता साथियों, ऑनलाइन खरीदारी करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले तो उत्पाद की जानकारी आपको ध्यान से पढ़नी है, केवल फोटो देखकर सामान नहीं खरीदना है। दूसरा, ये कीमत की तुलना करें, एक ही वस्तु अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कीमत में मिल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा, ये श्रोता साथियों की रिव्यू और रेटिंग को समझदारी से देखें, हर समीक्षा को अंतिम सत्य मानना आपके लिए जरूरी नहीं है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, रिटर्न और रिफंड की शर्तें ढंग से पढ़ें।
0: बिल्कुल।
1: पांचवा, ये कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें। जैसा कि जागृति जी, आज डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार उपभोक्ता होना मतलब डिजिटल रूप से जागरूक होना भी है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि एक जिम्मेदार उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, शिकायत और निवारण का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसीलिए अगर किसी उपभोक्ता को खराब गुणवत्ता वाला सामान मिलता है, गलत जानकारी दी जाती है या सेवा में गंभीर कमी होती है तो उसे चुप रहने के बजाय उचित माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराने की जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे साथियों, अपने अधिकारों को आप जानिए, जागरूक बनिए और गलत के आगे कभी मत झुकिए, क्योंकि जिस समय हम गलत के आगे झुक जाएंगे तो हम किसी भी कार्य को करने लायक भी नहीं बचते और सामने वाला व्यक्ति भी यही सोचेगा कि इन्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं चलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को ये भी समझना जरूरी है कि बिल लेना छोटी बात नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार युवा साथियों, हम दुकान से सामान तो खरीदते हैं लेकिन दुकानदार से बिल नहीं लेते।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतनी छोटी खरीदारी के लिए बिल की क्या जरूरत है। लेकिन बिल खरीदारी का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है, खासकर महंगे सामान या सेवाओं के मामले में। श्रोता साथियों, बिल संभाल कर रखना ज्यादा जरूरी होता है। जिम्मेदार उपभोक्ता खरीदारी के बाद ये सुनिश्चित करता है जागृति जी कि उसे उचित बिल या रसीद मिली है या नहीं। श्रोता साथियों, ये छोटी सी आदत हमें अधिक जागरूक उपभोक्ता बनाती है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सस्ता सामान हमेशा खराब नहीं होता और महंगा सामान हमेशा बेहतर हो ये भी जरूरी नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए साथियों जिम्मेदार उपभोक्ता केवल कीमत देखकर फैसला नहीं करता, वो गुणवत्ता, उपयोगिता, टिकाऊपन, सुरक्षा और जरूरत को भी ध्यान में रखता है।
1: जी जी,
0: खासकर हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर दी गई जानकारी, निर्माण और समाप्ति तिथि तथा अन्य आवश्यक विवरण देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि श्रोताओं, जिम्मेदार उपभोक्ता खरीदारी से पहले देखता है, पढ़ता है और फिर निर्णय लेता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे साथियों कि हमारी खरीदारी का असर सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं कशिश कि अगर हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हैं, बार बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की जगह हर बार डिस्पोजल चीजों का उपयोग करते हैं या ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें थोड़े समय के बाद फेंक दिया जाता है तो इससे कचरा बढ़ता है।
1: जी जी,
0: एक जिम्मेदार युवा ये सोच सकता है कि क्या इसे खरीदना जरूरी है, क्या इसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्या इसे किसी और के साथ साझा किया जा सकता है, क्या इसके स्थान पर अधिक टिकाऊ विकल्प उपलब्ध हैं?
1: बिल्कुल,
0: इस तरह श्रोता साथियों जिम्मेदार उपभोक्ता पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर युवा साथियों को बताएं तो जिम्मेदार उपभोक्ता होने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को समझना भी जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारे आसपास कई छोटे दुकानदार हैं, किसान हैं, हस्तशिल्पी हैं और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले लोग हैं। जब हम स्थानीय स्तर पर बने उपयोगी वस्तुओं को खरीदते हैं जागृति जी, तो हमारी खरीदारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि वे आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी स्थानीय पहचान और स्थानीय उत्पादों को भी महत्व दे, क्योंकि युवा साथियों स्थानीय मेहनत का हमें करना है सम्मान, खरीदारी से बढ़ेगा स्थानीय रोजगार और मान।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे साथियों कि आज के युवा के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है और निर्णय लेने की क्षमता भी है, इसीलिए उसके सामने जिम्मेदारी भी बड़ी है कशिश। उसे समझना होगा कि हर खरीदारी एक चुनाव है और हर चुनाव का कोई न कोई प्रभाव होता है। जब युवा सोच समझ कर खरीदते हैं तो वो अपने पैसों का बेहतर उपयोग करते हैं। जब वो अपने अधिकारों को जानते हैं तो गलत व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जब वो जरूरत के अनुसार खरीदते हैं तो वो अनावश्यक खर्च और बर्बादी को कम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: जब वो पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनते हैं तो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यानी कि श्रोताओं, एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनने का मतलब सिर्फ अपने अधिकारों को जानना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को भी समझना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत से तो हमारे युवा साथी ये तो समझ गए हैं कि वे सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि जिम्मेदार उपभोक्ता भी बन सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम जब भी बाजार जाएं या ऑनलाइन खरीदारी करें तो कुछ पल रुककर हमें पहले सोचना है, अपनी जरूरत को पहचानना है, सही जानकारी लेनी है, अपने अधिकारों को जानना है और अपने फैसले के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को समझना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिम्मेदार खरीदारी केवल हमारे पैसे की बचत नहीं करती बल्कि ये जागरूक समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर भविष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम भी हो सकती है।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, आप याद रखिए, खरीदारी में समझदारी उपभोक्ता की जिम्मेदारी, सिर्फ ग्राहक बनकर मत रहिए, जागरूक उपभोक्ता भी बनिए। जो युवा सोच कर खरीदता है वही जिम्मेदार समाज की नींव रखता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी सोच, हमारी आवाज और हमारी जिम्मेदारी ही समाज में बदलाव की शुरुआत बन सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ श्रोता साथियों अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, विदा जरूर लेंगे कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले सुनवाते हैं आपको यहाँ पर कार्यक्रम का अंतिम गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, बचपन जीवन का वह खूबसूरत समय होता है जब बच्चा अपने आसपास की हर छोटी बड़ी बात से कुछ नया सीखता है। कभी दादी नानी की सुनाई कहानियों से, कभी माता पिता के अनुभव से, तो कशिश कभी गाँव के बड़े बुजुर्गों की बातों से। हमारे गाँव में लोक कथाओं की एक समृद्ध परंपरा रही है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती श्रोता साथियों, बल्कि इनके भीतर जीवन के अनुभव, संस्कार, समझदारी और सीख छिपी होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय मोबाइल और टेलीविजन के बीच गुजर रहा है, तब कशिश लोक कथाओं को फिर से उनके जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लोक कथाएं बच्चों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और समाज से जुड़ने के साथ साथ सोचने और समझने का अवसर भी देती है। तो आइए आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि लोक कथाओं से कैसे सीखता है बचपन और ये कहानियाँ बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से आज हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं लोक कथाओं से सीखता बचपन को लेकर। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि बचपन जिसमें खेल भी है, शरारत भी है, हंसी भी है, सवाल भी है और ढेर सारी कल्पनाएं भी। लेकिन बचपन केवल खेलने और पढ़ने का नाम नहीं है श्रोता साथियों, बचपन तो वह समय भी है जब बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि लोक कथाओं से सीखता बचपन का क्या मतलब है, तो लोक कथा यानी कि ऐसी कहानियाँ जो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच सुनाई और आगे बढ़ाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: कभी दादी नानी बच्चों को रात में कहानियाँ सुनाती थी तो कभी गांव की चौपाल पर बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ बैठकर कोई किस्सा सुनाते थे। कभी खेत में अंजलि जी काम करते हुए माता पिता अपने बच्चों को कोई पुरानी लोक कथा सुना देते थे। इन कहानियों में राजा रानी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसी काल्पनिक दुनिया भी हो सकती है साथियों, जहाँ असंभव लगने वाली बातें भी संभव हो जाती हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें तो बचपन में सुनी गई कहानियाँ बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब बच्चा किसी कहानी में ईमानदार, मेहनती या दूसरों की मदद करने वाले पात्र को देखता है तो वह उसके व्यवहार से सीखने लगता है। ईमानदारी और सच्चाई की बात करें तो कहानियाँ बच्चों को सच बोलने और सही रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने का महत्व समझ आता है। दया और संवेदनशीलता जैसे कि पशु पक्षियों और जरूरतमंद लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति विकसित होती है। कहानी के पात्रों के कार्यों और उनके परिणामों से बच्चे निर्णय लेना भी सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कहानी सुनाते समय बच्चा अपने मन में अलग अलग पात्रों, स्थानों और घटनाओं की तस्वीर बनाता है। वह सोचता है कि जंगल कैसा होगा, कहानी का पात्र क्या करेगा और आगे क्या होने वाला है। इससे बच्चा कशिश कहानी के दृश्यों को अपने मन में महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: कहानी सुनकर बच्चा नई नई जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। बच्चा कहानी का नया अंत भी सोच सकता है या अपनी कहानी भी बना सकता है। कहानी में कई बार कशिश बच्चा जो है वो आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान से सोचने की क्षमता भी विकसित कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना शक्ति को भी बढ़ाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, जैसे कि श्रोता साथियों, मान लीजिए किसी कहानी में एक छोटा बच्चा मुश्किल परिस्थितियों में सच बोलता है। बच्चा कहानी सुनते सुनते सोचता है अंजलि जी कि अगर मैं इस ऐसी परिस्थिति में होता तो मैं क्या करता।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही सवाल उनके अंदर सोचने की क्षमता पैदा करता है। किसी कहानी में कोई पात्र लालच के कारण परेशानी में पड़ जाता है तो बच्चा समझता है कि हर चीज पाने की इच्छा सही नहीं होती। किसी कहानी में कोई गरीब व्यक्ति अपनी ईमानदारी से सम्मान हासिल करता है तो बच्चा इसे ये सीखता है कि व्यक्ति की कीमत केवल धन से नहीं होती। और वहीं किसी कहानी में एक छोटा सा पात्र अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को हल कर देता है तो बच्चों को इस कहानी को सुनकर ये विश्वास मिल जाता है कि समस्या का समाधान केवल ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से भी किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि अंजलि जी, हम देख सकते हैं कि बच्चों की दुनिया कल्पनाओं से भरी हुई है। एक डिब्बा उनके लिए घर बन सकता है, एक लकड़ी की छड़ी घोड़ा बन सकती है
1: जी,
0: और एक साधारण सी कहानी उनके मन में पूरी दुनिया बना सकती है। श्रोता साथियों, लोक कथाएं इसी कल्पना को मजबूत करती है क्योंकि जब बच्चा सुनता है कि कोई चरवाहा जंगल में गया है, वहां उसे एक रहस्यमय रास्ता मिलता है और उस रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी बुद्धि से समस्या को हल किया तो बच्चा अपने मन में उस जंगल, उस रास्ते और उस पात्र की तस्वीर बनाने लगता है। और यही कल्पना आगे चलकर उसकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है अंजलि जी। इसलिए बच्चों को केवल तैयार तस्वीरें दिखाना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी उन्हें केवल कहानी सुनाइए और उन्हें अपनी कल्पना से तस्वीर बनाने दीजिए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि लोक कथाओं से सीखता बचपन और ये कहानियां बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना शक्ति को भी बढ़ाती है, यही बात करें तो दादी नानी की कहानियां बच्चों का भावनात्मक जुड़ाव भी रखती है। जैसे कि कशिश, हमारे गांव में दादी नानी और परिवार के बुजुर्ग से कहानी सुनने की परंपरा रही है। रात को परिवार के लोग एक साथ बैठते थे और बड़े बुजुर्ग बच्चों को अपने समय की कहानियां सुनाते थे। इससे हम देखते थे कि कहानी सुनने से बच्चे और बुजुर्गों के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता था। बच्चे बुजुर्गों के जीवन और अनुभव से परिचित होते थे। स्थानीय बोली और नए शब्द सीखने का अवसर मिलता था। कहानी सुनने सुनाने से परिवार में बातचीत और साथ बैठने की आदत भी बढ़ती थी। श्रोता साथियों, हर क्षेत्र की अपनी अलग लोक कथाएं होती हैं। वागड़ क्षेत्र में भी स्थानीय बोली, लोक जीवन, पशु पक्षियों, खेती किसानी और प्रकृति से जुड़ी अनेक कहानियां सुनने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा और वागड़ी बोली के शब्द सीखते हैं, प्रकृति से उनका जुड़ाव होता है, जंगल, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे का महत्व वो समझ पाते हैं, स्थानीय रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन के बारे में जान पाते हैं। पुरानी पीढ़ी की कहानी नई पीढ़ी तक भी इसके माध्यम से पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यहीं अगर बात करें लोक कथाएं और संस्कार की, तो लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष मूल्य और संस्कार भी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सच्चाई, ईमानदारी, दया, सहयोग, मेहनत, प्रकृति, प्रेम और दूसरों का सम्मान जैसे मूल्य कई लोक कथाओं में दिखाई देते हैं। बच्चे को सीधे ये कहना कि हमेशा सच बोलो, कभी कभी उनके लिए सिर्फ एक सलाह बनकर रह जाता है।
0: जी जी।
1: लेकिन जब वही बच्चा कहानी में देखता है और सुनता है सच बोलने वाला पात्र कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से परिस्थितियों के बावजूद भी अपने विश्वास पर कायम रहता है, तो वो उस सीख को कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अंजलि जी, कहा जाता है कि कहानियां बच्चों को उपदेश देने के बजाय अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर देती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चों के जीवन में दादी नानी की कहानी का भी एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि एक समय था श्रोता साथियों जब शाम होते ही बच्चे दादी या नानी के आसपास बैठ जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: दादी बोलती थी कि आज कौन सी कहानी सुनोगे, फिर कहानी शुरू होती थी, कभी राजा की, कभी रानी की, कभी चालाक लोमड़ी की, तो कभी मेहनती किसान की, और कभी किसी ऐसे साधारण व्यक्ति की जिसने अपनी समझदारी से बड़ी समस्या हल कर दी थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, परिवारों की दिनचर्या बदल गई है, मोबाइल और डिजिटल माध्यम बच्चों के जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में अंजलि जी, दादा दादी और नाना नानी परिवार के बुजुर्गों से कहानी सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह बच्चों और बुजुर्गों के बीच संवाद का एक सुंदर माध्यम भी बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जब बच्चा पूछता है कि दादी आपके गांव में ऐसी कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी, तो कहानी के साथ साथ उसके सामने परिवार और समाज की पुरानी यादों का एक संसार भी खुलने लगता है।
0: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने कहा कि आज बच्चों के मनोरंजन के साधन बदल गए हैं, लेकिन कहानी सुनने की रुचि आज भी विकसित की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए परिवार, विद्यालय और समुदाय सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। माता पिता और दादा दादी प्रतिदिन कुछ समय बच्चों को कहानी सुनाए, गांव और बुजुर्गों और बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानी सुनने सुनाने का अवसर दें। कहानी सुनने के बाद बच्चे से उसका पसंदीदा पात्र और नया अंत पूछें, गांव के बुजुर्गों से लोक कथाएं सुनकर उन्हें लिखें और सुरक्षित रखें।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि लोक कथाएं केवल बीते समय की यादें नहीं है, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक अनुभव की अनमोल धरोहर है। एक कहानी कभी बच्चे को अपने से कमजोर व्यक्ति की सहायता करना सिखाती है, तो कभी उसे प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कशिश, वह उसे अपनी गलती स्वीकार करने का साहस भी देती है, और कभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की सीख भी देती है। हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के लिए हमेशा उपदेश देना जरूरी नहीं होता। कई बार एक छोटी सी कहानी वह बात समझा देती है, जिसे समझाने में लंबे समय तक बातचीत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए घरों में कहानी सुनाने की परंपरा को फिर से जीवित करना चाहिए। गांव के बुजुर्गों के पास मौजूद कहानियों को सुनना, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और बच्चों को भी अपनी कहानी गढ़ने का अवसर देना चाहिए। हम ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चे केवल कहानी सुने ही नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे जीवन के अनुभव को समझें।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आज जो बच्चा अपनी लोक कथाओं, भाषा और संस्कृति से परिचित होगा, वही कल अपनी विरासत को आगे बढ़ाने वाला जिम्मेदार नागरिक भी बन पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त तो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावा र हंगरे किसान भाई बोन ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु स्वागत कर रहा अपने आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन अपने रोज कार्यक्रम खेतीबाड़ी लई ने हाजिर थे सा एक नया विषय ने हाते तो आज नु एक नव विषय जुड़ाई रू है। आज नु विषय है पोषण समिति खेती हूँ कहवाय ने आनु हूँ महत्व है। तो आ सब बातें आज आप करेंगे पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमरे ला गीत ने मौर्य कर अपनी बातें आप हम बढ़ते रहो आपो रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: કિસાન ભાઈ બોન ગીત તો આઈશું પૂરું અને આણા ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું સ્વાગત કરે હા આપણે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જેમ કે ગીતે કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ્યા પોષણ સંવેદી ખેતીને બારામાં કે આ પોષણ સંવેદી ખેતી શું કહેવાય અને આનું આપણે કિસાન ભાઈ બોન બદલે શું મહત્વ હે તો આ સબ વાતે કરવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં પધારે તકા હે શ્રીમાન સોહનનાથ જોગી એ આપણે બતાડેગા પોષણ સંવેદી ખેતીને બારામાં તો પહેલે હામરી લાણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા સ્વાગત હે વાઘા રેડિયો પરિવારમાં
1: ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે હમ કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં નયે નયે વિષય પર બાતચીત કરતે હૈ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કે સાથ તો આજ ભી એક નયા વિષય જુડ રહા હે પોષણ સંવેદી ખેતી તો સર આપ હમારે સ્ટુડિયો પધારે હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો યે બતાઈએ કે આખિર યે પોષણ સંવેદી ખેતી હૈ ક્યા
1: સભી કિસાન ભાઈઓ કો રામ રામ ઓર આજ હમ બાત કર રહે હૈ પોષણ સંવેદી ખેતી
0: જી હા
1: ઓર પોષણ ખેતી જો તંત્ર હૈ વો हर किसान को अपनाना चाहिए क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं या हमारा जो वागड़ है हमारे यहाँ पे हर किसान की एवरेज अगर हम खेत देखेंगे तो मुश्किल से 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा मतलब हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है
0: बिल्कुल सर
1: उसी जमीन के अंदर हमको चारा भी उगाना है उसी में हमको दूसरी फसल नकदी फसलें भी उगानी है उसी में हमको हमारा खाने योग्य चीजें भी लगानी है ताकि परिवार है उसको खा सके तो आज हम बात कर रहे हैं पोषण संवेदी खेती के बारे में तो पोषण संवेदी खेती ऐसा है कि ऐसी खेती जो पोषण की दृष्टि से परिपूर्ण हो और परिवार को पोषण के लिए अधिकतर उसकी जरूरतें हैं वो अपनी खुद की खेती से पूर्ण हो जाए
0: बिल्कुल
1: ठीक है इसमें से चाहे हम सब्जी फल मसाले अनाज जो भी सामग्री पोषण के रूप में आती है वो सारी चीजें लगभग लगभग हम सारी चीजें हमारी खेती से ले ले हुए हमारी दालें हैं
0: जी।
1: है ना ये सारी चीजें हम हमारी खेती से प्राप्त कर ले हुए और हमको ऐसी प्लानिंग करके खेती करनी चाहिए ताकि हम हमारी दूसरी जरूरतें हैं उनके लिए भी उसी जमीन में से खेती हो जाए और हमारे परिवार की पोषण की आपूर्ति के लिए भी जो हमारे पास उपलब्ध जमीन है उसी से पूर्ति हो जाए और वर्ष भर के लिए वो सारी चीजें पर्याप्त हो
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमारे घर पे जो उगी हुई चीजें हैं वो ज्यादा पौष्टिक है फ्रेश है ना और हम बाजार में से लेने जाएंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी होगी इस मतलब पिछले साल पकी हुई चीजें होगी जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखी हुई होगी और वो आपको आज उपलब्ध होगी पता नहीं वहां पे सिंचाई के लिए उनको कौन सा पानी दिया गया है कौन सा खाद डाला है कौन सा पेस्टिसाइड डाला है हमको कुछ नहीं पता है हम बाजार में जाते हैं सब्जी देखते हैं रंग देखते हैं और ले आते हैं लेकिन उसके साथ में हम कितना जो है बीमारियां मतलब वो पोषण के साथ में हम कुपोषण साथ में घर पे ले आते हैं
0: बिल्कुल
1: तो पोषण की दृष्टि से देखते हुए कि हमारे खुद को हमको स्वावलंबी हमारे पोषण के लिए बनना जरूरी है हमारा जो खेती है पोषण को लेके उसको स्वशासी बनाना जरूरी है और हमारा जो स्वराज है जो पोषण स्वराज है वो तभी कायम हो सकेगा जब हमारी अधिकतर जरूरत की चीजें हमारी खेती से निकलेगी और हमारा परिवार की पोषण की जरूरत है हमारी खेती बाड़ी से पूर्ण होगी
0: बिल्कुल सर
1: और इसी को ही हम पोषण संवेदी खेती कहेंगे
0: बिल्कुल सर तो सर ये तो आपने बताया कि पोषण संवेदी खेती होती क्या है यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पोषण संवेदी खेती हमारे किसान भाई बहन करते हैं पोषण युक्त चीजें लगाते हैं तो उनको क्या लाभ हो सकता है
1: देखिए पोषण संवेदी खेती जो किसान करेगा एक तो सर्वप्रथम उसके खाने में विविधता बढ़ेगी
0: बिल्कुल सर
1: है ना
0: खाने में अच्छा रहेगा
1: बिल्कुल विविधता बढ़ेगी अलग अलग प्रकार का खाना खाएगा अनाज में भी वो ऐसा नहीं है कि सीजन वाइज अलग अलग अनाज खाएगा ठीक है उसको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी वो छोटा अनाज भी खाएगा बड़ा मोटा अनाज भी खाएगा है ना गेहूं भी खाएगा गेहूं के साथ में वो प्रोटीन के लिए दलहन भी मिला के खाएगा हरी सब्जियां भी मिलेगी कंदमूल फल वाली सब्जियां भी मिलेगी उसको हरे पत्तेदार सब्जियां भी मिलेगी और पौष्टिक सब्जियां जैसे गाजर वगैरह ये सारी चीजें हैं, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फल है, वो सारे मिलेंगे
0: जी।
1: तो उससे परिवार का स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा और कम बीमार पड़ेंगे तो जो परिवार के स्वास्थ्य की लागत है वो कम हो जाएगी, और जो लागत कम होना यानी कि परिवार की बचत।
0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ ही जो वो बाजार में अपने पोषण के लिए खर्च जो करता था वो भी बचेगा, जैसे सब्जी लाने में, दाल लाने में, फल लाने में, ठीक है, या कोई दूसरा प्रकार का अनाज लाने में। तो इस प्रकार से जो है उनको इससे फायदा होगा। साथ ही पोषण संवेदी खेती तंत्र करने से जो जमीन है हमारी, जो धरती माता हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी सुरक्षा होगी।
0: बिल्कुल, वो और, बंजर होने से ही बचेगी।
1: हाँ, बंजर होने से बचेगी, क्योंकि हम उसके लिए हमारे घर पे खाने के हिसाब से हम प्लान करेंगे, और क्योंकि हम पोषण के प्रति उसके ऊपर संवेदी होके खेती करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य का, और साथ ही हम मृदा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: उसमें हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे
0: जी जी।
1: हम देसी खाद का उपयोग करेंगे, हम जीवामृत का उपयोग करेंगे। मान लो कोई प्रकोप बीमारी का आया फसल पे, तो भी हम उस पे 10 परणी का छिड़काव करेंगे, है, हम नीम पेस्ट का छिड़काव करेंगे
0: जी जी।
1: हम अलग अलग प्रकार की जैविक जो तकनीकी है उसका उपयोग करके और उसका रोकथाम करेंगे, न कि हम जो रहे रासायनिक दवाइयां वो छिड़क के और उनको कंट्रोल करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: और साथ ही जैसे जो है बीमारियों से जो इनके ये जो रासायनिक खाद है या रासायनिक दवाइयां है, जहर है, यह अपने साथ में बीमारियां भरपूर लाता है। और आपने सबने सुना ही होगा कि कैंसर की ट्रेन है, वो पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा करने से और फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा करने से ही आज पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है।
0: बिल्कुल।
1: और उस ट्रेन का नाम कैंसर की ट्रेन ही है।
0: कैंसर
1: तो ऐसा, इन सब चीजों से बचने के लिए हमारी खेती का प्लानिंग हम पोषण संवेदी खेती तंत्र के अनुसार करें, और सर्वप्रथम हमारे परिवार के लिए करें, फिर जो भी हमारा जो बचता है वो हम दूसरों को दे, हम एक चीज दूसरों को दे के उसके चीज के बदले में, अनाज के बदले में अनाज ले सकते हैं, सब्जी के बदले में सब्जी ले सकते हैं, सब्जी के बदले में दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, वो इस तरह से। और उसमें जो उपयोग भी है वो देसी बीजों का, पोषण संवेदी खेती तंत्र में देसी बीजों का उपयोग होता है, ठीक है, हाइब्रिड बीजों का उपयोग नहीं होता है
0: जी जी।
1: क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है। अभी तक मतलब साइंटिफिकली ये चीज तो प्रूव नहीं हुई है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो उसकी जीन्स है उनके अंदर वो परिवर्तन करके और उस तरह से उन फसलों को या उन बीजों को बनाया गया है, तो वो निश्चित रूप से जो है जिनकी जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ हुआ है वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान या हानिकारक हमारे लिए हो सकता है।
0: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने पोषण संवेदी खेती के बारे में बताया कि पोषण संवेदी खेती क्या है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई बहन पोषण संवेदी खेती करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही वो अपनी जो भूमि है, अपनी जो धरती माता है, उसको बंजर होने से बचा सकते हैं, और उन्हें तरह तरह की विविधता वाले खाने की थाली भी उनको मिल सकती है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अगर उन ज्यादा कुछ पक जाता है तो बाजार में जाकर इसको बेच सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चल सकती है।
1: साथ ही जिनको वो देंगे या जिनका वो उपयोग करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो चीजें अच्छी होगी।
0: बिल्कुल सर। तो सर, जैसे कि पोषण संवेदी खेती के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूंगा
0: जी।
1: कि हमारी जो खेती है हमको मतलब दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि हम जो उगा रहे हैं क्या खा रहे हैं, क्या मैं उगा रहा हूँ वो मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं उगा रहा हूँ वो बाजार में बेच रहा हूँ और जो मैं खा रहा हूँ वो मैं बाजार से खरीद के ला रहा हूँ।
0: बिल्कुल सर।
1: ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान है वो अन्नदाता है, और अन्नदाता को अपने लिए भी अन्न उगाना चाहिए और दूसरों के लिए भी अन्न उगाना अन्नदाता का दायित्व है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जो उगा रहे हैं वो कहीं बाजार में बेचकर और बाजार वाली चीजें वो न खाए, उसके लिए आपने बताया कि जो हम उगा रहे हैं वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो आपने पोषण समृद्धि खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहन। जिम के आजे आपने स्टूडियो में आया था सोहन सर, इन्हें आपने बताड़ियो पोषण समृद्धि खेती ने बारे में। अभी आप देखी रहो कि टाइम थी गयो है कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर साथ साथ हमने ला एक और गीत।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करी सु।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
3: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
5: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि स्वराज केवल अपने अधिकारों को जानने का नाम नहीं है। स्वराज का अर्थ है अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपने संसाधनों और अपनी मेहनत को समझना और उन्हें मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाना। आज का विषय भी हमारे गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: कपास से किसान तक स्थानीय खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर। तो श्रोताओं, इस विषय पर आज आपसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में जैसा कि हम आपको मनोरंजन करवाते हैं तो पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ विषय है, कपास से किसान तक, स्थानीय खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर। अंजलि, जैसे कि विश्व कपास दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे उस सफेद रेशे की जो खेत से निकलकर हमारे जीवन में अनेकों रूपों में शामिल होता है। कपास केवल एक फसल नहीं श्रोताओं, इसके पीछे किसान की मेहनत, खेतीहर परिवारों की आजीविका, स्थानीय बाजार, परिवहन, मजदूरी, कारीगरी और अनेक छोटे बड़े व्यवसाय जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कपास के सफेद फूल को देखकर शायद हमें केवल एक सुंदर खेत दिखाई देता हो, लेकिन उस खेत के पीछे किसान की लंबी मेहनत छिपी होती है। भूमि की तैयारी से लेकर बीज का चुनाव, बुवाई, सिंचाई, निराई गुड़ाई, फसल की देखभाल और अंत में कपास की चुनाई तक किसान लगातार मेहनत करता रहता है।
2: बिल्कुल,
1: एक कपास का पौधा तैयार होने में समय लगता है। मौसम का संतुलन, पानी की उपलब्धता, कीटों से बचाव और बाजार की स्थिति, इन सभी बातों का असर जागृति जी किसान की फसल पर पड़ता है। इसलिए कपास के हर रेशे में किसान की मेहनत का सम्मान छिपा होता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था खेत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती है। किसान जब कपास जैसी फसल उगाता है तो उससे केवल किसान की आय नहीं जुड़ती, कपास की खेती के साथ खेत मजदूरों को काम मिलता है। फसल की ढुलाई के लिए परिवहन की जरूरत होती है, मंडी और स्थानीय व्यापार में गतिविधियां बढ़ती है, साथ ही बीज, कृषि उपकरण और खेती से जुड़े अन्य सामानों की मांग भी पैदा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेत से निकली फसल गांव की अर्थव्यवस्था में कई रास्तों में घूमती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मजबूत किसान मजबूत गांव की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है।
1: जी हाँ जागृति जी, कपास का सफर जो है वो केवल खेत की मंडी तक समाप्त नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसान के खेत से कपास निकलती है, इसके बाद उसकी सफाई, जिनिंग और अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। कपास से रेशा और बीज अलग किए जाते हैं और आगे यही रेशा सूत और कपड़े के निर्माण में काम आता है। यानी कि एक किसान के खेत में तैयार हुई फसल कई चरणों से गुजरते हुए हमारे कपड़ों तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल,
1: हम जब सूती कपड़े पहनते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह कपड़े के पीछे किस किसान की मेहनत छिपी हो और किस ग्रामीण परिवार की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि खेत की मिट्टी, किसान की मेहनत, कपास का रेशा, गांव की ताकत, स्थानीय खेती को दे सम्मान, मजबूत बने अपना किसान।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने कपास का सफर खेत से बाजार तक के बारे में बताया, तो हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि किसान और बाजार का संबंध क्या होता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसान के लिए फसल पैदा करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसे उचित बाजार तक पहुँचाना।
1: बिल्कुल,
0: कपास जैसी व्यावसायिक फसल में बाजार भाव का विशेष महत्व होता है। अंजलि, किसान को अपनी उपज की गुणवत्ता, बाजार की जानकारी और उपलब्ध व्यापारिक विकल्पों की जानकारी होना भी उपयोगी है। सही जानकारी किसान को बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल फोन, डिजिटल माध्यमों ने किसानों के लिए जानकारी तक पहुंच के नए रास्ते खोल दिए हैं। मौसम की जानकारी, कृषि संबंधी सलाह, मंडी भाव और सरकारी योजनाएं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय पर मिलने से किसान अपने निर्णय अधिक जागरूकता के साथ ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल जानकारी का इस्तेमाल करते समय विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ जागृति जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल खेती पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: खेती से जुड़े स्थानीय रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। कपास के आसपास कई प्रकार की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। कृषि सेवा, परिवहन, भंडार, प्रसंस्करण, छोटे व्यापार और स्थानीय स्तर पर मूल्य वर्धन। श्रोता साथियों, यदि गांव में ही कृषि उपज से जुड़ी कुछ गतिविधियां विकसित हो तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा अधिक समय तक घूम सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों यही स्थानीय विकास की सोच सच्चे स्वराज की भावना से जुड़ती है।
0: तो हम कह सकते हैं अंजलि कि कृषि केवल खेत में काम करने वाले व्यक्ति की मेहनत नहीं है। किसान परिवार के अनेक सदस्य अलग अलग रूपों में खेती से जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बुवाई से लेकर फसल की देखभाल और कटाई तक परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों का योगदान भी अक्सर दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि को समझते समय हमें पूरे परिवार और पूरे ग्रामीण तंत्र को ध्यान में रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कपास से किसान तक स्थानीय खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कपास और पर्यावरण की, तो श्रोता साथियों, कपास की खेती के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी जुड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी की सेहत, जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग लंबे समय तक खेती के लिए आवश्यक है। किसान यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती की वैज्ञानिक और टिकाऊ पद्धतियों को अपनाता है तो मिट्टी और पानी की सुरक्षा के साथ उत्पादन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, खेती का भविष्य केवल आज की उपज पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी मिट्टी और कितना पानी छोड़कर जा रहे हैं।
1: जी अंजलि, क्योंकि हर क्षेत्र की खेती उसकी स्थानीय पहचान से जुड़ी होती है। किसी क्षेत्र में कपास प्रमुख फसल हो सकती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मक्का, गेहूं, बाजरा, दलहन या अन्य फसलें महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए स्थानीय खेती को समझना केवल एक फसल को समझना नहीं है, ये अपने क्षेत्र की मिट्टी, मौसम, परंपरा, किसान के अनुभव और स्थानीय बाजार को समझना भी है। हमारे बुजुर्गों के पास खेती से जुड़ा बहुत सा पारंपरिक ज्ञान रहा है। आज आवश्यकता है कि उस अनुभव को आधुनिक कृषि विज्ञान और नई तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। सामुदायिक सहभागिता की बात करें श्रोताओं, तो गांव का विकास तब अधिक मजबूत होगा जब लोग केवल अपनी समस्या तक सीमित न रहे बल्कि सामुदायिक हित के बारे में भी सोचें। अंजलि, किसानों के बीच जानकारी का आदान प्रदान, कृषि संबंधी बैठकों में भागीदारी, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा और उपलब्ध सरकारी सेवाओं की जानकारी लेना, ये सभी सामुदायिक सहभागिता के हिस्से हैं।
0: जी जी,
1: गांव में किसान अपनी बात साझा करे, अपने अनुभव बताए और एक दूसरे से सीखे तो खेती से जुड़े निर्णयों में जागरूकता बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सामुदायिक रेडियो भी इसी सहभागिता का माध्यम है। रेडियो गांव की आवाज को गांव तक पहुंचाता है, किसान अपनी बात यहां पर रख सकते हैं, स्थानीय अनुभव साझा कर सकते हैं और खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक किसान अपने अनुभव किसी दूसरे किसान से साझा करता है तो दूसरे किसान को उसका फायदा पहुंच सकता है और दूसरे किसान जब उस अनुभव को अपनी खेती में अपनाते हैं तब उन्हें देखना होगा कि उनकी जलवायु, पानी की उपलब्धता कैसी है और किस तरीके से वो अपनी मिट्टी में उस खेती को कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है कि जब हम स्थानीय उत्पादों को महत्व देते हैं तो उसका लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। किसान की उपज, स्थानीय कारीगर का सम्मान, गांवों के छोटे व्यवसाय और स्थानीय सेवाएं, इन सबको महत्व देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का एक रास्ता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझने की जरूरत है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था केवल पैसा कमाने की व्यवस्था नहीं है, यह गांव के लोगों के बीच सहयोग, रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार भी है।
1: जी हाँ अंजलि, और जैसा कि स्थानीय खरीद और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपने बताया तो यही हमारे श्रोता साथियों को हम स्वराज के अर्थ और अपने संसाधनों की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल बाहर से आने वाले बदलाव का इंतजार करना नहीं है। सच्चा स्वराज तो तब दिखाई देता है जब गांव अपने संसाधनों को पहचानता है, किसान अपनी मेहनत का महत्व समझता है, ग्रामीण लोग अपने अधिकार और जिम्मेदारियां जानते हैं और समुदाय मिलकर स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करते हैं। कपास की कहानी भी हमें यही सिखाती है श्रोताओं कि एक छोटा सा बीज मिट्टी में जाता है, किसान उसकी देखभाल करता है, पौधा बढ़ता है, कपास तैयार होती है, फिर वह बाजार और उद्योग के कई चरणों से गुजरती है और अंततः हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। इस पूरी यात्रा में किसान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए किसान की मेहनत को समझना और सम्मान देना केवल किसान का सम्मान नहीं श्रोताओं बल्कि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव का सम्मान करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्व कपास दिवस के अवसर पर कुछ विचार अपने मन में अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि स्थानीय किसानों की मेहनत का सम्मान करना है, खेती से जुड़ी सही और विश्वसनीय जानकारी को बढ़ावा देना है, स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण व्यवसायों को महत्व देना है, जल, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, किसानों और ग्रामीण समुदायों के बीच संवाद को मजबूत करना है और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।
1: जी हां अंजलि, क्योंकि कपास का एक छोटा सा रेशा हमें एक बड़ी बात समझाता है, किसान और गांव की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अलग नहीं है। खेत मजबूत होगा तो बाजार मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और जब गांव अपने संसाधनों, अपनी मेहनत और अपनी सामुदायिक शक्ति पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है तभी स्वराज की भावना जमीन पर दिखाई देती है। आज विश्व कपास दिवस पर श्रोताओं, कपास के उस सफेद रेशे में छिपी किसान की मेहनत को हम पहचाने और स्थानीय खेती, स्थानीय रोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जागृति जी, कपास का हर रेशा किसान की मेहनत की पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: मजबूत किसान ही मजबूत गांव की शान है। स्थानीय खेती, स्थानीय रोजगार और सामुदायिक सहयोग, यही तो है सच्चे स्वराज की मजबूत नींव और सहयोग।
1: बिल्कुल,
0: इसी संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम सच्चा स्वराज से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि बातें ढेर सारी हो गई है और समय हो चला है विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हाँ श्रोता साथियों, जिंदगी में हम सभी ने कुछ न कुछ सपने देखे होते हैं। कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है और श्रोता साथियों कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसे देखकर लोग कहें हाँ इस इंसान ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। लेकिन श्रोता साथियों, सपना देखना जितना आसान है उसे पूरा करने की कोशिश करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रास्ते में डर आता है, लोगों की बातें आती हैं, असफलताएं आती हैं, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कभी लगता है कि शायद हम यह नहीं कर पाएंगे। और यहीं से आज का हमारा विषय शुरू होता है श्रोता साथियों, जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए। जी हाँ श्रोता साथियों, जिंदगी में जोखिम लेना हमेशा गलत नहीं होता। सोच समझ कर उठाया गया कदम हमें आगे ले जा सकता है, लेकिन बिना कोशिश किए हार मान लेना हमें वहीं रोक देता है जहाँ हम खड़े होते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे जीवन में डर का होना स्वाभाविक है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो मन में कहीं सवाल आते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैंने इतना समय लगाया और सफलता नहीं मिली तो, ऐसे सवाल हर किसी के मन में आते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ श्रोता साथियों इतना होता है कि कुछ लोग इन सवालों से डर कर रुक जाते हैं और कुछ लोग इन सवालों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यही लोग धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुँचते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में हर कोशिश सफलता नहीं देती, लेकिन हर कोशिश हमें कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाती है। अगर हम एक बार असफल हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सपना गलत था। हो सकता है साथियों कि हमारी तैयारी अधूरी रही हो, हो सकता है तरीका सही नहीं रहा हो, हो सकता है हमारे पक्ष में नहीं रहा हो। लेकिन श्रोता साथियों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति डरता है वह कमजोर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रोता साथियों। यह एक स्वाभाविक भावना है जो कि हर इंसान को लगती है। एक विद्यार्थी को परीक्षा का डर लगता है, एक युवा को नौकरी न मिलने का डर लगता है, एक किसान को फसल खराब होने का डर लगता है, एक छोटे व्यवसायी को नुकसान होने का डर लगता है, एक कलाकार को लोगों की प्रतिक्रियाओं का डर होता है। डर का होना सामान्य बात है साथियों। असली हिम्मत यह नहीं कि हमें डर ही ना लगे, असली हिम्मत तो यह है कि डर लगने के बावजूद हम सही दिशा में कदम उठाएं। इसलिए श्रोता साथियों, जब अगली बार आपके सामने कोई नया अवसर आए और मन में डर पैदा हो तो खुद से एक बार जरूर कहिएगा, डर लग रहा है लेकिन मैं सीखूंगा, मैं तैयारी करूंगा और कोशिश जरूर करूंगा। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। और कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि डर हमारी कमजोरी नहीं है और कोशिश छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो इन बातों को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरिए इस विषय को लेकर, तो आगे जानते हैं साथियों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आज हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन श्रोता साथियों उसके पीछे उसकी मेहनत हमें नहीं दिखाई देती, हमें उसका परिणाम दिखाई देता है, उसकी असफल कोशिशें नहीं। किसी ने कई बार नौकरी के लिए आवेदन किया होगा, किसी ने कई बार परीक्षाएं दी होंगी, किसी ने अपने काम में कई बार नुकसान देखा होगा, किसी ने लोगों की आलोचना सुनी होगी, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। यही लगातार कोशिश धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार मेहनत हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है और सफलता बाद में देती है। जी हाँ श्रोता साथियों, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने मिलती हैं। कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं, कोई कहेगा इतना बड़ा सपना मत देखो, कोई कहेगा पहले कोई सुरक्षित रास्ता चुनो। ऐसी बातें कई बार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। लेकिन श्रोता साथियों हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति हमारी परिस्थिति नहीं जानता, हर व्यक्ति हमारे सपने नहीं समझ सकता। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपने जीवन का फैसला सोच समझकर आप खुद लीजिए। अगर सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी ही होगी और आपका परिणाम भी आपके जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि छोटे कदम होते हैं वही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अगर आपको कोई कौशल सीखना है तो रोज कुछ समय सीखिए, अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो पहले उसके बारे में जानकारी जुटाइए, अगर आपको बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाना है तो रोज बोलने का अभ्यास कीजिए, अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो रोज थोड़ी सी तैयारी कीजिए। जी हाँ श्रोता साथियों, हर दिन का एक छोटा प्रयास आपके बड़े सपने की ओर एक कदम है, इसलिए अपने छोटे कदम को कभी छोटा मत समझिए। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमें अपनी तुलना भी दूसरे लोगों से नहीं करनी है। आज के समय में हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। किसी की नौकरी लग गई तो हमें अपने चिंता होने लगती है, किसी ने घर बना लिया तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, किसी को सफलता मिल गई तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत कम है। लेकिन श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है। किसी की शुरुआत पहले हुई, किसी की परिस्थितियाँ अलग हैं, किसी के अवसर अलग हैं। इसलिए श्रोता साथियों, दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को मत छोड़िए, अपना ध्यान है वो अपने रास्ते पर रखिए। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि हम कभी कभी इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए श्रोता साथियों हमेशा सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपके पास जितना है वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटा काम कीजिए, छोटा लक्ष्य बनाइए, छोटी उपलब्धियां हासिल कीजिए, फिर अगला कदम उठाइए, क्योंकि श्रोता साथियों रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचता है। जो व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहता है कि मेरे पास सब कुछ नहीं है वह शायद शुरुआत ही नहीं कर पाता है। साथ ही श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज की हमारी बात का सार बहुत सरल है। जिंदगी में डर आएगा, असफलताएं आएंगी, लोग सवाल करेंगे, कई बार रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन इन सब के बीच हमें एक चीज नहीं छोड़नी है, वो है श्रोता साथियों अपनी कोशिश। क्योंकि हो सकता है कि आज की कोशिश सफल न हो सकता है कि कल भी परिणाम आपके मन के अनुसार नहीं आए। अगर आप लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहे तो आपकी संभावना बनी रहती है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं असफलता से सीखूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं दूसरों की बात सुनूंगा लेकिन अपने सपनों को बिना सोचे नहीं छोड़ूंगा, मैं डरूंगा जरूर लेकिन डर के कारण रुकूंगा नहीं, और सबसे जरूरी बात, मैं जोखिम से नहीं कोशिश छोड़ने से डरूंगा। याद रखिए साथियों, सपने उन्हीं के पूरे होते ही जो सपने देखने के बाद उनके लिए कदम भी उठाते हैं। अगर रास्ता मुश्किल है तो थोड़ा धीरे चलिए, अगर थक गए तो थोड़ा आराम कर लीजिए, अगर गिर गए तो खुद को संभालिए, लेकिन अपने सपनों से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि श्रोता साथियों
क्योंकि श्रोता साथियों मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बावजूद चलता रहता है। तो उठिए साथियों, अपने सपनों को याद कीजिए और आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा कदम ही आपके बड़े सपने की पहली सीढ़ी बन जाए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान।
1: जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे। यह बात आज ही तुम जान लो।
2: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी।
0: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
2: वाग्धारा संस्थान और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी। मोटा अनाज मोटा अनाज।
3: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
0: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
2: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
3: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
0: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
2: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
4: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
2: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
4: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
0: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
2: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
0: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।